0: आयकपनु सोवरातात आयकुया दिल्ली केनावल्यान प्रसारित जावपी हिंदीतल्यान खबरो.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए. श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं. इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रु

रूडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोब्जे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना दी है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए

0: नोंद करता आयचो हो खास दीस 23 जुलय.
1: दिन विशेष.

0: ऐकपयानं तुम्ही ट्यून केला 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो एफ एम रेनबो चॅनल आणि तुम्ही ऐकतात आयच्या आमच्या सकाळच्या सभेच्यो तरेकवार कार्यावळी. येशना आठवड्या येतात कांय खिणा भितर ऐकूया दिल्ली केंद्रावल्यान प्रसारित जावपी हिंदीतल्या राष्ट्रीय खबरो समाचार प्रभात.
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार. भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा. केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है. लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. एक रिपोर्ट.
6: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है. मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को

0: जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति

0: निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है सरकार के

हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा।

0: शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ईशान तुम्ही ट्यून केला 105.4 मेगाहर्ट्झचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचा हो FM रेनबो चॅनल। 8:40 आतात ऐकूया कोकणीतल्या राष्ट्रीय खबरो आमच्या स्टुडिओतल्या।

0: कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में एयर कंजर्वेशन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड फाइनली 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, विच इज मोर ऑफ एन अम्ब्रेला एक्ट जिसमें सारा एनवायरमेंट की सारी चीजें कवर होती है, बट दैट केम आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी स्पेसिफिकली. सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो होते हैं जो वाटर और एयर एक्ट के अंडर काम करते हैं, एंड EIA नोटिफिकेशन जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर से ही एमिनेट करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again. But India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. Toh also we know, toh after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. Mein, when we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner, ki kitne tarike ke rights hain. Environment law कहाँ कहाँ से आ सकता है. सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि लाइक आई मेंशन इन द वेरी बिगिनिंग, उसमें मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे डेवलप हुआ थ्रू अमेंडमेंट्स, बट उसमें सुप्रीम कोर्ट का पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द केसेस, तो इट इज समथिंग विच पीपल से इन एनवायरमेंटल लॉ सर्कल्स, कि इफ यू टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ एनवायरमेंट लॉ, वो किसी रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दी चंद का केस, जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के, वहां पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन, बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में CRPC जो पहले हुआ करता था, विच इज नाउ BNSS, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए, बट वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है, बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा, कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी, कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई। थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। अब जो

0: मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में. वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21. आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो. तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इम्प्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजंस हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स. तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया. एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ. आर्टिकल 21 में देर वेर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट. वो दून वैली का केस था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया. बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. And you must have heard the name of M.C. Mehta. He was a big-time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं. जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, वॉट M.C. Mehta डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले. क्योंकि जब एक वेर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी. सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व्ड. So, for example, I have given the example of two cases, Ganga pollution case and the oleum gas leak case. So, just to take one example, in the M.C. Mehta versus Union of India case, M.C. Mehta went to court and it said that ye tanneries se jo pani, jo chemical factories or tanneries se jo waste nikal ke pani mein ja raha hai, which is polluting the Ganga river. Eventually, the court had to order to shut down these tanneries. So, this now right has taken in the form of a remedy as well. Indian Council for Enviro Legal Action, isme court ne pehli baar एक हाई लेवल पे इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द टीएन गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: हो आशिल्लो आशा भोसले हांचो आवाज इजाजत ह्या फिल्मा खातीर गीत रचना गुलजार हांची आनी संगीतकार आर डी बर्मन. इशांत तुमी आयकतात पोरण्या हिंदी फिल्मी गीताच्यो कार्यावळ सदाबहार आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो आसा एफ एम रेनबो चॅनल.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं. आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है.
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है.
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
7: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
8: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: इतने नट खट छुअत दही को घट घोड़े माखन
1: छा एक दिन नट खट छुअत दही को घट घोड़े माखन छो एक दिन नट खट।

0: दुल्हन वही जो पिया मन भाय या फिल्मांतलें रविंद्र जैन हाणी बरोवन संगीतबद्ध केल्लें गीत गायताल्यो हेमलता. इश्टान तुमी आयकतात पोरण्या हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ सदाबहार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफ एम रेनबो सेवे वरवीं सकाळच्या बरोबर 9:45 येतात.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं. आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है.
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है.
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
7: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा ओ ये सही है बेटा.
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.

0: रात आती है,
1: कहीं तेरी मेरी बात भी

हाथ किसी के ना आई, हाथ किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सुमार 60 कोटी लोक 5 लाख रुपया मेरेन फुकट उपचाराचे हकदार झाल्यात. आता मेरेन 12 कोटी परस चोड मुफत उपचार केल्यात, जाका लागून गरीब कुटुंबाच्या उपचार खर्चांत सुमार 2 लाख कोटी रुपयाची बचत झाल्या. आयजूच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करून आयुष्मान कार्ड तयार करा. अधिक माहिती खातीर 1455 नंबरवर कॉल करा.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
2: पक्का.
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.

0: श्रोते हो, या गीताबरोबरच समाप्त होतोय आजचा आपला हा मराठी गीतांचा कार्यक्रम. 105.4 मेगाहर्ट्झांवर तुम्ही ऐकत आहात FM रेनबो. बरोबर 11 वाजता दिल्ली केंद्रावरून आम्ही प्रसारित करीत आहोत हिंदीतून बातम्या.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है. नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए.
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं. गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो.
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं. इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम.

0: स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने का प्रावधान करता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोरदोना सियोनोस्का दावकोवा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिला राष्ट्रपति का होना गर्व की बात है। स्कोपे में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 बुरी तरह प्रभावित है। बनिहाल और उधमपुर सेक्टरों के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन, कीचड़ और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके कारण लगातार दूसरे दिन वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि मौसम में सुधार और सड़क मरम्मत पूरी होने तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा न करें। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आयकुप्यानो, आज 23 जुलय म्हळ्यार नॅशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, अर्थात राष्ट्रीय प्रसारण दीस। आयच्याच दिसा 1927 वर्सा मुंबयच्यान भारतात पयलेच फावट रेडिओचे प्रसारण सुरू जाल्ले। 1930 वर्सा सरकाराच्या अधिकारान हे प्रसारण आयले। उपरांत 1936 वर्सा ऑल इंडिया रेडिओ अशे नाव ताका मेळ्ळे। तर 1956 वर्सा ताका आकाशवाणी हे नाव मेळ्ळे। तेन्नाच्यान आयज मेरेन रेडियोन आमच्या जिणेंत एक खाशेली सुवात निर्माण केल्या। गीत संगीत आसूं वा खबरो, म्हायती आनी मनरिजवणाचो एक विश्वासू सांगाती म्हळ्यार आमचो रेडियो। आयच्या डिजिटल युगांत लेगीत रेडियोन आमची सदांच साथ दिल्या। रेडिओचो आवाज, ताचो सांगात आनी ताचो मोग सदांच आसा आनी उरतलो।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं।

0: याद रखोगे।
1: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: साधना सरगम आणि स्वप्नील बांदोडकर यांच्या आवाजात हे गीत तुम्ही ऐकले. अशोक पत्की यांचे संगीत आणि श्रीधर कामत यांची गीतरचना. सुगम संगीताच्या कार्यावळीत या खिणाक घेऊया लहानसाच विसव.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा ओ ये सही है बेटा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
0: सुगम संगीताच्या कार्यावळीत तुमका परतून एकदा येवकार. ऐकूया फुडले गीत.

0: सब यहाँ आओ और ये ऑनब्लस ले लो।
1: मैम मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा

0: आयकू पियानो, ह्या गीता वांगडा चित्ररंजन कार्यावळ इतल्यान सोंपता. 105.4 MHz तुमी आयकता FM रेनबो. 1 वराचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी. उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है. श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट

0: पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र खुले समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमापार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मेगाचांचेर तुम्ही ऐकता एफएम रेनबोचो तरेकवाळ कार्यावळी। ऐकुप्यानो आज 23 जुलय म्हळ्यार लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची जयंती। ते एक व्हड देशभक्त विचारवंत पत्रकार आनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातले मुखेल फुडारी आशिल्ले। तांच्या जयंती दिसा तांच्या यादीक आनी विचारांक आमी प्रणाम करतात।
3: वीर जवान जवानांच्या अनुभवांची गाथा घेऊन येता आकाशवाणी वीर जवान। दर महिन्याच्या दुसऱ्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर महादेव वाहिनींत आणि दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा सकाळी 7:30 वरांचेर एफएम रेनबोंत वीर जवान।

0: मग ऐकुप्यानो, तुम्ही ऐकता तुमच्या आवडीची कातारा एफ एम रेनबोचेर. कार्यवळीत या खिणाक घेऊया लहानसॉच ब्रेक.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
2: पक्का.
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.

वालिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
1: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
1: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गाँव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा।

0: अजी जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
1: विग्नेश जी, बाहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है।
0: जी
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा।
0: जी
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है।
0: जी
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नववर्ष माना जाता है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है?
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं।
0: जी।
1: और वहां से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं, फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं।
0: जी,
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है।
0: जी,
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की।
0: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को, पकड़ लेंगे।
2: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
3: चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
3: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
5: जी महाराज, जी महाराज।
3: अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
6: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को

0: ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहां जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
1: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
2: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
3: जी महाराज।
2: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
1: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
2: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
1: अच्छा, तो ये प्रकरण है तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
2: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
1: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
3: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
4: महाराज की जय! महाराज की जय!
0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
5: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
6: आज मैं राजा बनूंगी।
7: आज मैं राजा बनूंगा।
8: आज तो मैं राजा बनूंगा।
9: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
1: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
6: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
3: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
6: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
3: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
10: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
6: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
3: महाराज की जय हो।
11: जय हो।
3: महाराज की जय हो। जय हो।
0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
2: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है, और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
12: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
0: शिला जब खोदकर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा

0: विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
1: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
2: चोरी।
0: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
2: हाँ, ये सच है। मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
1: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
0: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
2: झूठ।
0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
1: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
2: चोट? वो
0: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे। उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
0: राजा को क्रोध आ गया।
3: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।
0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय 4th मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
6: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी। अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ। अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
7: अरे मशकूब भाई।
8: जी जनाब।
7: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
8: लीजिए जनाब।
7: लाइए।

0: बस बस बहुत बहुत शुक्रिया व्यास बुजी। अच्छा ये लो पैसे रखो
1: जनाब, थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
0: रखो रखो।
1: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
0: गर्मी में पानी पिलाया तुमने। रखो, रखो।
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया।
2: ये अमृत वाला
3: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
4: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
0: मशकूब भाई।
1: जी जनाब।
0: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
1: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
0: लाओ। बस बस।
1: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
0: सही कहा मशकूक भाई।
1: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
0: अभी तक तो कुछ नहीं।
1: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
0: अरे नहीं नहीं
1: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
0: भाई
1: जी,
0: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
1: क्या बात करते हैं,
0: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
1: इसमें नेकी की क्या बात है?
0: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: ये तो मेरा फर्ज था।
0: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
1: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
0: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
1: ये तो बड़ा नेक काम है।
0: अब ये लीजिए।
1: ये किताब, ये किताब किस लिए?
0: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
1: अच्छा,
0: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
1: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
0: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
1: तौबा तौबा तौबा,
0: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
1: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
4: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
5: जनाब,
6: लाजवाब इंसान है वो।
4: क्या बात करता
6: है, क्या बात, बहुत अच्छे इंसान।
3: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
7: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
3: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।

0: पैसा लाए हो?
1: यकीन मानिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
2: मुंह उठाए खाली हाथ चले आते हो?
1: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
0: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
1: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
0: बच्चे को गोद में उठाओ।
1: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम साहब।
0: चलो निकलो बाहर, निकलो।
1: मर जाएगा ये।
3: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब, शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्द आलूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या खूब रंग जमा कर

0: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
1: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा,
0: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संग दिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा, प्रश्न पत्र लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू की, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इन्हीं मुद्दों पर राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे, ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी अपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि नीट पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। हालांकि DMRC ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणी

कर्मियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया। फिलीपींस के मनीला में 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत यूएई संयुक्त वाणिज्य दूतावास समिति जेसीसीए की 7वीं बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रवासी भारतीय मामलों की काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और यूएई के विदेश मंत्रालय के अवर सचिव उबैद मोहम्मद अलहसान अल शमसी ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने समुदाय के कल्याण पर बल दिया और कौंसलर, वीजा और कानूनी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए आगामी रणनीति पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें यह दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि ये सारे दावे झूठे हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सुमार 60 कोटी लोक 5 लाख रुपया मेरेन फुकट उपचाराचे हकदार जाल्यात. आता मेरेन 12 कोटी परस चोड मुफत उपचार केल्यात, जाका लागून गरीब कुटुंबाच्या उपचार खर्चांत सुमार 2 लाख कोटी रुपयाची बचत जाल्या. आयजूच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करून आयुष्मान कार्ड तयार करात. अधिक माहिती खातीर 14555 नंबरवर कॉल करात.
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: 6 minutes past 4. Welcome back. This is FM Rainbow 105.4 megahertz. Vagashni Panchi. Listen to It's a Beautiful Thursday Afternoon. And when to request her. So, you know, if you would like to listen to any tune on air, dedicate a message, or, you know, any favorite song, you just go ahead and text me on 838-007-1054. You could just WhatsApp me or SMS me on 838-007-1054.

0: इशानो आता काय खाणं भितर ऐकूया हिंदीतल्यान खबरू.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है. मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी. श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है.
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें. विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं. सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं. मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे.
1: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे. संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली. सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया. परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है. आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है. भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं. यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है. भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है. मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के

घाट क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: लान्सोस कमर्शियल ब्रेक घेऊन तुम्ही आम्ही मेल्टा रेनबो सांस या कार्यावळीन इष्टानो आज जागतिक शिवग्रेन्स दीस असा। शिवग्रेन्स या दुयेंजा बद्दल जागरूकताय निर्माण करपा खातीर 2010 साला पासून प्रत्येक वर्सा 23 जुलय हो दीस शिवग्रेन्स दिन जागतिक शिवग्रेन्स दिन म्हणून साजरो करतात। हो दीस आरोग्य विषयक उपक्रम असा। सियोग्रेन्स सिंड्रोम हो दीर्घकालीन ऑटो इम्यून म्हळ्यारूच रोग प्रतिकारक शक्तीशी संबंधित अशें दुयेंस जावन आसा। दोळे किंवा तोंड सुकें पडटा ही ताजी लक्षणां आसात। हो आजार फुफ्फुसां मुत्रपिंड आनी मज्जा संस्थेक सुद्दां त्रास करूं शकता। सियोग्रेन्स फाउंडेशन ही इलेन हॅरिस हांची संकल्पना आसली। तांणी 1983 सालांत ह्या आजाराचें निदान ह्या दुयेंसाचें निदान केलें। शिक्षण आनी संशोधन सुदारपाच्या उद्देशान हे फाउंडेशनची स्थापना तांणी केल्ली। 23 जुलय हो स्विडीश नेत्रतज्ञ डॉ हेनरीक सियोग्रेन हांचो जल्मदीन आसा। तांणीच 1933 सालांत सियोग्रेन्स सिंड्रोमचो शोध लायिल्लो।

0: खबरों बरोबर 7 वाला लिज्जत।
1: आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली के आज हाथ थाम।

में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

0: हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, ये हमें तुका वोट पोले तांबड़े करूं बड़े मेकअप से टालना।
1: थैंक यू टोनी।
2: आगो वो आनी तुझो कौन
1: तो मजो बाबुल भाव
2: बाबुल भाव बाबुल भाव जाल्यार तो तुका डार्लिंग कित्याक म्हणटा
1: तो म्हाका भुरग्यापणांतल्यान डार्लिंगूच म्हणटा।
0: हॅप्पी बर्थडे एनी, ये हांवें तुका बरें नायट ड्रेस हाडला।
1: थैंक यू बॉनी।
2: अरे वो आनी तुझो कौन
1: तो मुझे माइ जो गो ना।

0: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री
1: मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार कवि और संपादक अंजुम शर्मा और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवन लाल।
2: वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स, ऑल आर व्यूअर्स हियर इन द लाइव ऑडियंस हियर एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक री इमेजिनिंग ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण का बदलता क्षितिज। इस टॉपिक में दो शब्दों ने बहुत एक्साइट किया, और सबसे पहला है री इमेजिनिंग और दूसरा है बदलता, क्योंकि
0: पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया प्रधानमंत्री।
2: फोकस बी इन द कॉन्वर्सेशन, वी हैव अ वेरी एस्टीम्ड पैनल, डाइवर्स पैनल अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। आई थिंक हर 5 साल में जनरेशन बदलती है, तो डेफिनेटली अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हमारी पैनल भी है विद वेरिड एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस। और इसमें से बहुत सारे

0: लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली पिछले 15-20 सालों में इस क्षितिज को बदलता हुआ देखा है. सो इट्स लाइक अ बिफोर एंड आफ्टर सी चेंज आया है. सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन. अर्चना कपूर इज अ वेल नोन कम्युनिटी मीडिया स्पेशलिस्ट, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर विद ओवर 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. हर फ्लैगशिप इनिशिएटिव रेडियो मेवात इज अ 2-time नेशनल अवार्ड विनर. शी इज द रिसिपियंट ऑफ क्वाइट अ फ्यू लॉरल्स एंड अवार्ड्स. अर्चना, वेलकम टू द प्रोग्राम. हमारे अगले पैनलिस्ट डॉक्टर अंजुम शर्मा. डॉक्टर अंजुम शर्मा कवि, संपादक और पत्रकार हैं, जिन्हें साहित्यिक और सांस्कृतिक एरियाज में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है. वे कम्युनिटी रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, बीबीसी हिंदी से भी जुड़े हैं. डॉक्टर अंजुम को अनेक अवार्ड से भी नवाजा गया है. अगले पैनलिस्ट उमेश चतुर्वेदी. With over 30 years of experience in the news industry, including the print and electronic media, Umesh joins us here today. More than 15 of these years were spent in television news, covering the entire functional gamut of the news business, that is reporting, scripting, research and post-production. Well, currently he's working with Prasar Bharati. He's also a media teacher and also engages with actually designing the syllabus, which he's done for a number of universities for their mass communication course. Our final panelist, Dr. K.G. Suresh. Dr. K.G. Suresh is a senior journalist turned academician. He is currently the director of the India Habitat Center and is also a senior adjunct fellow with a leading think tank of the Global South Research and Information System for Developing Countries. He has served as the Vice Chancellor of many universities, including the Indian Institute of Mass Communication, Delhi, which is India's premier media training institute. And of course, he also is a recipient of many prestigious awards. And of course, a very, very warm welcome once again to the audience. I think when we're talking in front of a live audience, the tone, tenor and energy changes rather than just a discussion in the studio. So thank you very much, All India Radio, for ensuring all this for us today. So I'd like to actually start with you, Anjum. जब हम क्षितिज की बात करते हैं, जब हम एक न्यू होराइजन की बात करते हैं एंड जेनरेशनली जब हम चेंज देखते हैं, तो अगर हम री इमेजिन कर रहे हैं, रीविजिट कर रहे हैं इंटर जेनरेशनल शिफ्ट जो इस री इमेजिनिंग में और रिक्रिएटिंग में आएगा, वो किन एरियाज में आना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि जब हम री इमेजिन कोई भी चीज कर रहे होते हैं, इसमें एक शब्द है री, हमें फिर से विचार करना है, फिर से इमेजिन करना है. तो जाहिर है आपके पास अगर स्मृतियां नहीं है तो आप नई स्मृतियां बना भी नहीं पाएंगे. यानी आप री इमेजिन कैसे करेंगे? आपके पास पहले का कुछ ना कुछ होगा, उसके आधार पर आप री इमेजिन कर पाएंगे. तो मैंने वो दौर देखा है जब अमीन सयानी के बाकायदा कार्यक्रम आया करते थे और हम उन्हें सुना करते थे, तो हमने भाषा के स्तर पर हमने री इमेजिन करना शुरू किया. जब हम कहते हैं कि रेडियो की भाषा बहुत चित्रात्मक होनी चाहिए ताकि मैं उसको इमेजिन कर सकूं, क्योंकि रेडियो का जो मीडियम है वो सबके लिए है, उनके लिए भी है जिनके पास दृष्टि नहीं है और उनके लिए भी है जिनके पास है, कि हम किस तरीके से भाषा के स्तर पर हम बदलाव लाते चले गए. जब मैं अब उसको रीइमेजिन करने की कोशिश करता हूं तो पूरा 2000 का दशक निकल जाता है और 2010 का पूरा एक दौर आता है जिसमें हमने चैनल्स की बाढ़ देखी, और उसके बाद 2020 के अगर हम दशक में आए, खासतौर पर 2012-13-14 के बाद में जब हमने इंटरनेट की क्रांति देखी, जो क्षितिज में बदलाव आया है वो फीडबैक के लेवल पे आया है. विल्बर श्रम जिसे केवल सेंडर, मैसेज और रिसीवर की बात करते थे, वहां पर डेनिस मैकवेल की एक थ्योरी काम करती है जिसमें वो बोलते हैं कि श्रोता या रिसीवर अब पैसिव फॉर्म में नहीं रह गया है, वो एक्टिव है. तो बदलते हुए क्षितिज में मुझे तुरंत आवाज अपनी सुनाई दे रही है. पहले मुझे साप्ताहिक रूप से एक पत्र लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब मैं तुरंत उसको देख पा रहा हूं. इस बदलते हुए क्षितिज में हमने रेडियो को टीवी पर आते हुए देखा है, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि रेडियो जो सुनने की चीज है वो मैं देखते हुए सुन सकता हूं. यानी आपकी एक चित्र लगा दिया गया है और अब मुझे पता है कि गौरा जी कैसी दिखती हैं. पहले मुझे नहीं पता था वो कैसी दिखती हैं, तो मैं उनको इमेजिन करते हुए, उनका चित्र देखते हुए, हम चारों का मुझे पता है शाम को यूट्यूब पे एक थंबनेल लग जाएगा और बाकायदा उस पर लिखा जाएगा कि क्या क्या आ रहा है, रात में हम किस बारे में विचार कर रहे हैं या बात कर रहे हैं. पहले आपके पास सुविधाएं नहीं थी, तो बदलते हुए क्षितिज में हमने ये सब चीजें देखी.
0: थैंक यू अंजुम. कभी कभी ना देखने में ही सुंदरता होती है, और कभी कभी ये चिंता भी होती है कि जो विजुअल मीडिया

0: होता है, केजी विल बी कमिंग टू यू फॉर दिस, दैट समटाइम्स द विजुअल मीडियम कैन टेक अवे फ्रॉम द ऑडियो इम्पैक्ट. यू हैव सीन ट्रांजिशन. टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ अ विजुअल रेडियो. हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन? हाउ डू यू सी दिस?
1: आई थिंक दैट रेडियो इज समथिंग दैट हैज सर्वाइव्ड द विसिसिट्यूड्स ऑफ टेक्नोलॉजी. टेलीग्राम हैज वाउंड अप, landline telephone has wound up, but not radio. The romance with radio continues. The charm of the radio continues even today in different formats. And I think one of the reasons is that radio carries a certain amount of trust and credibility. I have worked in other media also, but when you make a comparative study, it becomes clear that radio has earned, and it's an earning, earned much more trust and credibility than many other media. So that is one reason that people continue to trust it. Secondly, radio remains relevant to a large segment of our population, whether it is the agriculturist or the fisherman. It remains relevant to the common man. It hasn't become irrelevant, disconnected with the people at large. Now, in this context, I'll come to your question.
0: Right.
1: And that is, the future is certainly visual storytelling. Storytelling has always been the, I would say, the forte of mass communication. But now we are getting into the age of visual storytelling, where, because it has been said that a photograph can speak 1,000 times better than a word, so it is more powerful. So the visual is now part of audio. That's why now we are talking about audio-visual mediums. And the digital revolution which has happened has enabled this. And I'm glad, I must say, that one of the most important programs in recent times on radio worldwide has been Mann Ki Baat. It has become a force multiplier. What visual does is force multiplication. Because what is in the realm of imagination, as he said, you can see it there. So I believe that people are increasingly, yet at the same time, you also see, when you talk about the future or reimagining broadcast, you also talk about podcasts. Now, podcasts are no more just the audio part of it. It is also the video part of it. So I think that broadcast is entering a very, very exciting era. There is a combination of both audio and video. And this is going to be the defining, so far as the paradigm shift in broadcasting that is happening.
0: Umesh, KG just spoke about, I think, the understanding that broadcasting and telecasting are now, broadcasting is going to subsume in itself for telecast. That's the need of the hour. Then he earlier spoke of romance and charm. So do you think that when we're looking at broadcasting as visual and audio, in the future, as we're looking at, would radio by itself, as separate, I know broadcasting is definitely an umbrella term, would radio still retain a USP, and what would it be?
2: आकाशवाणी के 90 साल हाल ही में पूरे हुए हैं. 8 जून को 90 साल पूरे होने पर इसी कैंपस में कार्यक्रम हुआ था और उसमें हमारे आकाशवाणी के महानिदेशक ने बाकायदा इसकी घोषणा की थी कि अगले साल से हम कुछ शहरों में विजुअल रेडियो स्थापित करेंगे, कि विजुअल रेडियो की किस तरह से उपयोगिता भविष्य में दिखेगी और किस तरह से उसको विकसित होना है, किस तरह से उसको प्रसारित होना है, किस तरह से उसका प्रसार होना है. लेकिन मुझे लगता है कि इसको याद करना चाहिए यहाँ कि रेडियो के विकास में, वैसे तो 1923 से ही भारत में प्रसारण शुरू हो गया था, रेडियो क्लबों से शुरू हुई ये प्रसारण की यात्रा यहाँ तक पहुंची है और इसमें तकनीक के तमाम तरह के सोपान तय हुए हैं. उसमें आप देखेंगे कि 1995 का साल है जो रेडियो के लिए एक अलग तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होता है. इंटरनेट उसी दौर में आता है और उसी दौर में कमोबेश एक आध साल आगे पीछे एफएम, जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूला कहते हैं, वो आता है. उस दौर में हमारा बचपन रहा है जब हमारे यहाँ रेडियो आता था तो उसको एक सोशल स्टेटस के रूप में देखा जाता था. हमने वो यात्रा भी देखी है, जो पारंपरिक तकनीक थी उसको भी देखा है और एफएम और इंटरनेट के बाद की भी तकनीक को देख रहे हैं. और 1995 की जो इंटरनेट क्रांति है उस रेडियो को एक जीवंत राह देता है. विजुअल रेडियो थोड़ा सा कल्पना करना कठिन होता है कि एक रेडियो भी ऐसा हो सकता है जो विजुअल हो सकता है. 1995 के बाद इंटरनेट आता है और जो माध्यमों का, मीडियम्स का कन्वर्जेंस होता है, तो आप उसमें देखेंगे कि हर माध्यम में समाया हुआ है. अखबार जो है वो भी इंटरनेट पर है और ट्रेडिशनल अखबार भी है जो हम पढ़ते हैं कागज पर. रेडियो भी उसी फॉर्म में आ चुका है, ट्रेडिशनल रेडियो सेट में भी सुन रहे हैं और हम उसको इंटरनेट के माध्यम से भी सुन रहे हैं. रेडियो के भी जो छोटे छोटे बाइट्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, वो भी आ रहे हैं. स्मृतियों से शुरू

0: हुई यात्रा तकनीक के इस लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन इस सब पूरी यात्रा में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हर आशंका को झुठलाते हुए रेडियो जिंदा है और रेडियो के पास 70-80 साल का प्रतिबद्ध श्रोता भी है, डिवोटेड लिसनर, और जेन जी भी है, और सबकी चुनौती को सामना करना है रेडियो को।
1: जी, आपने एक बात कही कि रेडियो अभी भी जिंदा है, और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सारे मीडियम एक मीडियम दूसरे मीडियम में समाया हुआ है। बट जस्ट टू शेयर कि आकाशवाणी का एजेंडा हमेशा अलग रहा है, आउटरीच का है, किसान का है, डिफरेंट, तो आई थिंक उसको रखते हुए इन टर्म्स ऑफ लिसनरशिप जब हम देखते हैं और आंकड़े भी सामने आए हैं तो आउटरीच अभी है। मैं आपसे ये सुन रही हूं कि हमारे जो श्रोताओं की जो डिवीजन होती है, जो लिसनर्स की डिवीजन होती है, कैटेगरीज अलग होती हैं और अलग अलग कैटेगरीज को केटर करने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडियम एंड वी ऑल एवरी मीडियम परफॉर्म्स अ रोल, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे आउटरीच हो, चाहे सोशल ब्रॉडकास्टिंग। आपके पास आते अर्चना, जब सबका अलग अलग रोल है, कम्युनिटी रेडियो में आपकी माहिरता है, यू हैव बीन फ्रंट रनर इन प्रोपोगेटिंग दिस एंड एस्टैब्लिशिंग दिस एज अ वायबल मीडियम, इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू सी द होराइजन एंड व्हेन यू सी आगे, before you talk about community radio and understanding from you and your experience, what are, say, three new ideas that could actually reimagine broadcasting?
2: Jo madhyam jiske liye bana hai वो अगर उसी में एक्सेल करे तो उसकी रीच, उसकी आइडेंटिटी, उसकी यूनिकनेस बनी रहेगी। इफ वी स्टार्ट गेटिंग विजुअल, वी आर ओनली सेकंड बेस्ट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दूरदर्शन, वी हैव सेवरल अदर प्राइवेट चैनल्स, वी ऑलरेडी आर सीइंग द प्रेशर ऑन प्राइवेट एफएम्स टू गो डिजिटल। आई डू द रेडियो फेस्टिवल, आई हैव डन 9 एडिशंस ऑलरेडी एंड व्हाट आई हैव सीन देयर एंड आई हैव टॉक्ड टू सम ऑफ द बेस्ट, लाइक यू नो द मोस्ट फेमस पीपल, एंकर्स, आरजेस, व्हाटएवर यू कॉल देम, फ्रॉम सम ऑफ द channels that he mentioned and others also in smaller towns, they said ki hamari awaaz hamari pehchan thi, hum jab kisi dukaan mein ghuste the kahin log hame sunte the, abhi ye jo ek hod machi hui hai na visual visual visual, we have no recall. हम आज भी 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद अमीन सयानी को याद करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी आवाज हमारे कानों में अब भी गूंजती है। वी डू नॉट नीड टू नो हिज फेस। आई थिंक that words give you the possibility of a million fantasies, so it gives you so much of scope, so much of play, so much of fantasy which visuals limited, because an AI, I'm sorry to say, is limiting us further, because what is happening is that everybody is using AI to generate messages and to create posters, that entire creativity is just getting lost. I'm not saying that don't use it, use it as a tool but not as a content creator. That is what I'm trying to say. Now coming back to your question, everybody talked about when there was this transformation, community radios, the policy came in 2002, we got operational only in 2004, the first radio, Anna Radio, and then 2006 tak only educational institutions were allowed to broadcast, to operate a community radio. In 2006 and the policy changed, 2008 the first NGO owned community radio came into being. What is important is what are these radios doing? This is a medium which belongs to the people. This is a true, true representative of democracy. It is by the people, for the people, and of the people. That is what a community radio is. You can only get the license if you have a community. You have to have a content community local, you have to have a governance committee that is local, and you have to broadcast 50% of the content which is produced by the community, and out of that 50%, 25% has to be about women, by women, and for them. I think which other medium is doing this? And that is why I have so much faith in community radios, and we are going slow, it's fine, but we are stable. And that is what is important. As long as hum haashe pe rehne wale logon ki awaazein la rahe hain, tab tak hum apna kaam kar rahe hain. Hum ye mic kuch aise logon ke samne rakh rahe hain, unki awaazon ko ek manch de rahe hain, jinhone kabhi socha hi nahi tha ki unke paas bhi kuch kehne ko hai. Yahi hamare desh ki vividhta, yahi hamare desh ka rashtra nirman ka kadam, aur yahi hame wo banata hai jo hum aaj hain. मेलबर्न की एक रिपोर्ट

0: जब कोविड हुआ रेडियो को ही लोगों ने ट्यून इन किया, एक ही विश्वसनीय सोर्स था, वो था रेडियो, एंड दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंड थिंग आई थिंक कि रेडियो के पास जितनी आर्काइव्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो इज इन इटसेल्फ
1: अ लाइब्रेरी, ट्रेजर ट्रोव.
0: तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आई सी द रोल ऑफ रेडियो एज अ लाइब्रेरी ऑफ द पास्ट ऑफ हिस्ट्री एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड थर्डली आई सी इट एज द वॉइस ऑफ पीपल. आई सी इट एज अ लोकल मीडियम दैट कनेक्ट्स विद पीपल, दैट टॉक्स टू देम इन देयर लैंग्वेज एंड दैट टॉक्स टू देम अबाउट वॉट कंसर्न्स देम. बिकॉज इफ वी गेट इन टू द एआई ट्रैप वी विल बिकम सब्जेक्ट्स ऑफ एल्गोरिथम्स. As Anjum said, we'll come back to that.
1: I think you're right. There are lots of many views on this. And before I come to you, Anjum, I'd like to also say that dissent is the essence of progress. Ye bhi samajhte hue, Anjum, ki chitij. So, thodi doomsday predictions hui. And we also know that things can go bad, things can go good. And I think to say that radio is a safety mechanism, I think, again, public service broadcasters are already playing that role. Archives are happening. A lot of work is happening. And you're absolutely right. That's the way to go. Anjum, aapki hum nazar laate hain kshitij pe. Woh nazar hi dal sakte hain kyunki wahan pahunchta to koi nahi hai. Jitne paas jao, utna dur chala jata hai. To jab hum koi kshitij ko dekhte hain aage, aur ye achhi baat hai, isi bahane hum kshitij ki demand mein ya need mein aage badhte hain. So jab hum aage dekhte hain, aur hum audio visual isse alag jate hue, ये समझने के लिए कि आजकल अगर हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, देखिए कितना कुछ है. वो कहते हैं जब चूज करने के लिए इतना कुछ होता है तो मैं कुछ भी नहीं चूज कर पाती. तो इसमें हम डिफ्रेंसिएशन कैसे ला सकते हैं, क्वालिटी पे एम्फेसिस इन ब्रॉडकास्टिंग कैसे आ सकता है?
2: जी, एक शब्द उठा, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है. जाहिर सी बात है, विजुअल पॉडकास्ट तो बहुत बाद में आया. साल 2002 में द गार्जियन के रिपोर्टर थे बेन हैमर्सले, उन्होंने कहा कि आने वाला दशक पॉडकास्टिंग का होगा, क्योंकि उस टाइम पे आईपॉड बहुत फेमस हुआ करते थे. तो आईपॉड पर जो कास्टिंग हुई उसके थ्रू वो पॉडकास्ट फैलता चला गया. साल 2007 में रिकी जार्विस बहुत बड़े पॉडकास्टर रहे. किसी को अंदाजा नहीं था कि चार साल के भीतर भीतर जो मीडियम अभी अभी आया है वो मीडियम इतना लोकप्रिय हो जाएगा कि 1 मिलियन डाउनलोड हो जाएंगे और आप उसको बाद में सुन सकते हैं. बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा से लेकर तमाम लोगों ने पॉडकास्टिंग शुरू की और लोगों ने उसको दूर तक पहुंचाया. कोविड के समय पर ऑडियो पॉडकास्टिंग बूम पर थी. कोविड के बाद जब रील्स का दौर आया उसमें 50% की गिरावट हुई है. यानी ऑडियो पॉडकास्टिंग धीरे धीरे कम होती चली गई. क्यों? क्योंकि आपका ध्यान धीरे धीरे वीडियो पॉडकास्टिंग पर चला गया. तो आप ऑटोमेटिकली विजुअल मीडियम की तरफ बढ़ चुके हैं. हाँ, जो बात इन्होंने क्वालिटी की कही है मैं मानता हूं. दरअसल होता क्या है, जब आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं अचानक से, तो आपका ध्यान समाज की तरफ कम, ऑडियंस की गिरफ्त पकड़ने की तरफ ज्यादा रहता है. आप अपने एल्गोरिथम को एक ही तरीके से ले जाना चाहते हैं क्योंकि रेंज आपकी बहुत बड़ी हो जाती है. वहां पर क्वालिटी गिरती है क्योंकि मुझे व्यूज की अब दरकार है. मुझे कंटेंट नहीं, मुझे इस टाइम क्वालिटी नहीं, मुझे क्वांटिटी चाहिए. जैसे ही आप व्यूज की तरफ जाएंगे आप क्वालिटी से गिर जाएंगे. आकाशवाणी रेडियो ने हमको उच्चारण सिखाया. हमें सिखाया कि क ख ग घ ङ के बाद ख और क और ग भी एक ध्वनि होती है. यहां पर आप बदलते हुए क्षितिज को देखते हो.
1: आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं कंटेंट की, और कंटेंट को कौन ड्राइव करता है, क्या ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट को इन्फ्लुएंस करता है या लोग जो कंटेंट मांगते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं या कंटेंट में. एंड आई ऑलवेज नो दैट दिस इज अ वॉर व्हिच इज इनवेरिएबली देयर. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी? डू वी गिव व्हाट इज आस्क्ड फॉर और डू वी टेल देम व्हाट यू शुड आस्क फॉर? एंड आई थिंक ये दुविधा रही है. के जी, कमिंग टू यू, टू थिंग्स. वन इज ऑफकोर्स हाउ वी द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी लाइक यू स्पोक अबाउट इन द फोर्स मल्टीप्लायर, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट इन टर्म्स ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेज स्पेशली फॉर द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कि कंटेंट के गार्डरेल्स कुछ ज्यादा ही हैं. कभी कभी हम मानते हैं कि गार्डरेल्स हमें बढ़ने नहीं दे रही, हमें एक्सपैंड नहीं करने दे रही, हमारी विजन सीमित रख रही है. बट कभी कभी हमें ये भी लगता है कि ये मेरी टारगेट और गार्डरेल्स मुझे आगे लेके जा रही है. तो ये बैलेंस कैसे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर मेंटेन करेगा कि हम फिर भी रेलिवेंट रहें?
3: जब मैं रेडियो में प्रोग्राम देके बाहर निकलता हूं और वो ब्रॉडकास्ट होता है तो मुझे 10 फोन आज भी आते हैं लोगों का कि आपको आज इस विषय पर सुना. ये मुझे किसी और माध्यम में नहीं मिलता है.

I go to several platforms, but this is the one platform where I still receive feedback and people tell me that, sir, कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो शाम को ड्राइव कर रहे हैं, मैंने किसी को बताया नहीं होता है और हमने चलते चलते सुना. तो ये रेडियो का चार्म है. रेडियो का चार्म है कि मैं बगैर टीवी में देखे, बगैर मोबाइल को पकड़े, मैं अपना डे टू डे काम करते हुए भी मैं रेडियो के म्यूजिक को, डिस्कशंस को सुन सकता हूं. दैट इज द चार्म.

0: role of the private FM channels. But radio today immediately comes to your mind is the All India Radio, the Akashwani network. And how credibility? Credibility because hum sensationalize nahi karte hain. Hum sansani nahi phailate hain. Hum TRP ke race mein nahi hain. Hame jo hai mahol banane ki zarurat nahi hai. Aaj jab main radio ka bulletin sunta hoon to mujhe pata hai ki aaj desh mein kya hua hai. खेलकूद के क्षेत्र में क्या हुआ है, राजनीति में क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हुआ है. आई गेट ए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल न्यूज. आई डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद वन न्यूज. आई बिलीव दैट ऑल इंडिया रेडियो में आज भी आप शाम को सुनेंगे तो उसमें पूरे देश भर के समाचार होंगे. लास्ट क्रेडिबिलिटी की बात. हम मन की बात कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है. मन की बात की स्वीकार्यता पर पीएचडी हुए हैं कि क्या सोशल इंपैक्ट उसका हो रहा. एक प्रोग्राम है जहां लोगों को सुना जाता है, उनके व्यूज को लिया जाता है, उनसे बात किया जाता है और ऐसे ऐसे चीजों के बारे में हमको बताया जाता है जिसके बारे में देश के मुख्यधारा की मीडिया को भी कोई खबर नहीं है कि ऐसा अच्छे काम हो रहे हैं देश में. उसके बारे में स्पेसिफिकली द प्राइम मिनिस्टर रेजेस दोस पॉइंट्स. अब मैं विजुअल स्टोरी टेलिंग की जो आपने बात कही, मैं ये कहूं कि भाई हमारा तो टेलीफोन का तो मतलब तो लैंडलाइन था तो उसको तो रिटेन करना ही है. हमको इनोवेट करना है. उसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने फंडामेंटल्स को छोड़ दें, लेकिन हम डाइवर्सिफाई करेंगे. हम जो है विजुअल मोड में भी जाएंगे, हम जो है सोशल मीडिया में भी जाएंगे, लेकिन हमारा कोर स्ट्रेंथ हमारा ब्रॉडकास्टिंग रहेगा. बट वी विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट विल रिमेन, दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर. बिकॉज टेलीविजन चैनल्स का काम नहीं था वेबसाइट चलाना. क्यों चला रहे हैं? शॉर्ट न्यूज क्यों चला रहे हैं? रील्स के फॉर्मेट में क्यों आ रहे हैं?
1: अखबार भी निकाल रहे हैं.
0: अखबार भी निकाल रहे हैं क्यों? तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आपको टेक्नोलॉजी और वक्त के हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना है. दैट डज नॉट इन एनी वे डाइल्यूट योर कोर स्ट्रेंथ. और हमारा कोर स्ट्रेंथ ब्रॉडकास्टिंग है. एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक लास्ट बात मैं कह दूं, आई बिलीव दैट नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू फार्मर्स एंड फिशरमैन एंड ऑल दैट, इस देश के कलाओं को संस्कृति को संवर्धन करने में आकाशवाणी का एक बहुत बड़ी भूमिका है. इस देश के कलाकारों को तैयार करने में, आज भी कलाकार मुझसे आके मिलते हैं हैबिटेट सेंटर में और मुझसे कहते हैं सर मैं आकाशवाणी ए ग्रेड आर्टिस्ट हूं, मैं ये ग्रेड आर्टिस्ट हूं. उनका रिकॉग्निशन है. आकाशवाणी की इतनी बड़ी एक भूमिका है. इट टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी. When it comes to development journalism, sorry to say, none of the private channels are talking about development journalism. Only Prasar Bharati is talking about, and community radios, of course, are an integral part of that.
2: Umesh, I think social interest ho, chai entertainment ho, commercial interest, sustainability of any medium, even sustainability of a channel, a lot depends on kya wo sustainable hai. To ye commerce, social, entertainment, isko balance karna future mein aap kaise dekhte hain?
3: मुझे लगता है कि थोड़ा अपने इतिहास को भी और उसके बेस को भी झांकना चाहिए कि आज जो प्रसार भारती रन कर रही है बीजी बर्गीज कमेटी की सिफारिशों से रन कर रही है. जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर को जो होना चाहिए उसको अपनी परंपरा की पूंजी की बुनियाद पर, अपने संस्कृति की पूंजी की बुनियाद पर आगे बढ़ना होगा और उस पहचान को बनाए रखना होगा. और कमर्शियलाइजेशन की आप जो बात कर रही हैं, वो कमर्शियलाइज प्रसारक और सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका में कुछ तो अंतर होगा ही. वो उस तरह से बाजार के हवाले नहीं हो सकता. आपको मैं बता दूं, वो चुनाव की गिनती होती थी ना, तो जो फाइनल ब्रॉडकास्ट करने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए और भरोसा करने के लिए हम सब लोग रेडियो की कमेंट्री सुनते थे और अपने एक इनपुट डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी लगा के रखते थे कि भैया जरा रेडियो से टैली करते रहो. क्यों? क्योंकि रेडियो ने उसने डूज और डोंट का एक बहुत क्लियर वो बना के रखा. मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत स्पष्ट है कि जब तक हम पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करते हैं तो हम कोई खबर नहीं देंगे. और दूसरी बात यह है जो आपने कहा, प्रसार भारती या रेडियो प्रसारण जो है, जो यहाँ चर्चा चली तो मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि हमारी पहचान हमारे मूल ऑडियो मीडियम के ही रूप में है और बनी रहनी चाहिए. और दूसरी बात यह है, रेडियो अगर विजुअल हो रहा है तो विकास के साथ कदम चाल कर रहा है और तकनीक जो है ना आपको अपनी पुरानी पहचान में बांधने नहीं देती. वो आप एडाप्ट करें चाहे ना करें, वो आपको एडाप्ट करने के लिए मजबूर करती है. मुझे लगता है रेडियो प्रसारण के साथ भी वही बात है.

0: जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपना अपना परसेप्शन सिर्फ थ्रो करते रहेंगे।
1: एक सुंदर शब्द पे आपने इस कार्यक्रम को एक आई थिंक अंतिम पड़ाव पे ले आए हैं, परसेप्शन, और वही शब्द है जिससे हमने शुरुआत की थी। हमने व्यूइंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू की बात की थी, एंड मेनी ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस आर कनेक्टेड टू ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक काफी सारे तार अंदर भी खनके होंगे, है ना, सितार बजा होगा। लाइक टू इन्वाइट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस।
2: जी, मेरा नाम कीर्ति बैद है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ आकाशवाणी के प्रसारण कर्मियों पर। तो आकाशवाणी का जो आर्काइव है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप बात करें।
1: सो मैं ये सवाल अपने सारे एक्सपर्ट्स को देती हूँ, एंड कौन बात करना चाहेगा?
0: आकाशवाणी का बहुत ही समृद्ध आर्काइव है। रेडियो ने खासतौर पर शास्त्रीय संगीत को निष्ठा से संरक्षित किया है, और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी थाती है। ना सिर्फ आकाशवाणी की यह थाती है, ना सिर्फ यह प्रसार भारती की है, बल्कि यह भारत की थाती है। और दूसरी बात यह मैं कहना चाहूंगा, आपको संविधान सभा की पूरी डिबेट मिल जाएगी यहाँ, और जिन आवाजों की पहचान की हम बात करते हैं उन पहचान को भी अगर आपको ढूंढना है, खोजना है, तो आर्काइव में जा सकते हैं। और एक बात और है कि आर्काइव का अपना यूट्यूब एक अलग से चैनल भी है, आप उसमें अद्भुत अद्भुत इंटरव्यू भी सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आई थिंक वील क्लोज द प्रोग्राम हियर। अर्चना, अंजुम, उमेश, केजी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम।
3: प्रसारण का बदलता क्षितिज, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये विशेष वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर केजी सुरेश, फिल्म निर्माता और मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और संपादक अंजुम शर्मा, और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही थीं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवन लाल, प्रस्तुति सहयोग जय सिंह और प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसिनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोस डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के

0: के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने या उसे साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे सस्ती, पारदर्शी और चालक हितेशी सेवा बताया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही ऐकतात FM रेनबोचे प्रसारण। तसेच न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपावरवी डिजिटल मोडाचेर तुम्ही ऐकतात FM रेनबो। आता रातची 12:05 जाऊन गेल्ली आसात। आयच्या दिसापुरते आमचे प्रसारण आता बंद जाता। FM रेनबोच्या प्रसारणांत परती तुमची आमची भेट फाल्यां सकाळी 6 वरांचेर जातली। आयचे रातीपुरतो आता आमकां निरोप दियात। शुभरात्री। जय हिंद।